0: को चीख चीख के सबक खुदाई का पढ़ ले ओ ना मुराद ले सीख सीख
1: के लिख दे तू अल्लाह।
0: वो लिखता था लैला।
1: अरे मैं बोला अल्लाह।
0: लैला लैला लैला।
1: अरे दोजख में जाएगा तू क्या लैला लैला करता है एक हाड़ मास की पुतली का अल्लाह से मेला करता है तू। हाथ पड़ा
0: तर तर।
1: अब दूजा भी
0: तर।

0: पतंग संग उड़ गया बचपन, छनक छनक मन टगर सुहानी रे, लड़कपन आया अब तो कसक मसके क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय जवानी की होती है यही निशानी रे, कि चितवन तिरछी तिरछी हुई जाए, हाँ आई जवानी रे,
1: हाँ जवानी आई साथ में लाई पवन के संग संग।

0: के खुरचन, अरे मथुरा के पेड़े, रेवड़ी मेरठ वाली चाट तरी बाकी लाएगा। अरे मैं हुक्म करूं तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा।
1: अरे लगवाऊंगा लगवाऊंगा।

0: जात, नीच जात, बद जात, ये तेरा हाथ काट दूंगा मैं। ओ नापाक, तुझे मालूम कि तूने किसे छुआ है?
1: वो मेरी है।
0: कीड़े तू हराम, कीड़े तू हराम, कि तेरा नाम जात हर काम काट, शमशान घाट के नाम। अगर मैं नहीं करूं तो, अगर मैं नहीं करूं तो, नाम मेरा तबरेज नहीं कुछ और, ये मेरी बहन नहीं कुछ और, कि अब्बस सहन नहीं कुछ और।
1: वो मेरी है।
0: अरे अब्बस, अरे अब्बस, गैर के बदन को छूती है साली बदजात।
1: हाथ को भींच ले, खुद को खींच, हाथ को भींच ले, खुद को खींच, अरे मत भूल कि नामा भूल कि तूने उसे छुआ है। जो है मेरा बंद जुनून, मेरी रग रग में बहता खून, अरे जो मेरी दुआ है, अरे जो कुदरत का फरमान, मसीहा का है जो ऐलान, खुदा का दान मेरी हर दर्द दवा है, कि जिसके आंसू हैं अनमोल, कि जिसकी मुस्कान का ना तोल, कि सुन ले गैस रहा ये बोल, कि वो मेरी लैला है।
0: तेरी जुर्रत
2: नहीं हिम्मत,
0: तेरी हरकत
2: नहीं ताकत,
0: तू है हया की पुतली बस,
2: पर ना हू दया की पुतली बस।
0: मैं कब्र खोद दूंगा इसकी, तू खरा सोच लेना,
2: पर लाश लगेंगी दो दो भाई, जरा सोच लेना।
0: कसम मैं खाता हूं कि किस्सा खत्म करूंगा आज, तेरे 100 टुकड़े करके मजनू मैं 1000 चीथड़े कर दूंगा, 1000 चीथड़े कर दूंगा, 1000 चीथड़े कर दूंगा। तू कट जाएगा नीच, रोक, तू मिट जाएगा नीच, रोक, ये तेरा खून, तू रोक, रोक, ये मुझे चाहिए, रोक, रोक, ये खुशी मेरी तलवार, ये तेरे बार की बस, तू पहुंच गया शमशान।
1: लैला मुझे माफ कर देना कि मैं तुझे याद करके बेबस, मजबूर था मेरी जान।
3: मजनू है मजनून कि उसने किया किसी का खून, कि उसको सजा मिलेगी पत्थर से मारा जाएगा, ये कहता है कानून कि जब तक सांस चलेगी।

0: के बंधन को निभान
1: शरण मजनू हम लोग लीला लीला खेलते हैं।
0: बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए।
1: ए मजनू मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
0: गत के गत करने लीला में लैला ऐसी
2: लैला
1: मैं ही तुम्हारी लैला हूँ। प्यार करती हूँ शादी करना चाहती हूँ।

0: बस
1: मैं तो पहले कहा था मैं ही बनूंगी.
2: What is going on here?
3: चलो बेटा तू घर जाकर माँ के काम में हाथ लगा.
4: तेरे चम्मच तेरे चाकू तेरे बेलन तेरे घुंघरू तेरे

0: मैं तुम्हें बहुत बहुत बहुत प्यार करती
1: हूँ। अच्छा पच्छर कहीं की।
2: कोको खेल कोको। चलिए इमरान की लैला बन ले।
3: टापू बना के ठुड्डा मारोगे ना होश आएगा तो बुड्ढा हो जाएगा।
2: अवेल नंबर वन
4: बोल सिया पति रामचंद्र की जय।
2: चल बेटा लंका नहीं जलानी है। चल
4: मैं तबरेज लैला का भाई।
5: मैं इंस्पेक्टर भंडा।
4: है मजनू अगर तूने मेरी बहन की ओर नजर भी उठाई।
2: भाई मेरी मम्मी बता रही है तू आजकल लैला के साथ घूम रहा है।
5: ढूंढ के रख दूंगा।
4: ठहर जा। आखिरी बात कोई बचा तबरेज।
2: साला साला हूँ तुम्हारा गलत चला नहीं दूंगा।
1: वैसे भी मरने वाले हो तुम। ए, कम से कम LIC तो करवा दो।
6: मुझे मरवाएगा।
0: मिल गया तबरेज।
4: ये कैसे तबरेज बनेगा?
0: चौधरी साहब मुझे गुंडा नहीं भाई चाहिए। तबरेज तो यही बनेगा।